0: एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
1: इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो?
0: जी हाँ। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है। मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है।